मैं यह गा मानो है ऐसे मेरा बमना गो का रूम मानो ये रे रही तो कही रे राम रिमा रे रही तो कही रे राम रिमा ओपन लीवा कही राजे ने ओपन लीवा कही खालो राधा